0: रेडियो तहसंचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास
1: 99.4 रेडियो तहसंचार स्टुडियो टाइम
0: इट्स 6 AM हिजो जस्तो आज छैन, आज जस्तो भोलि रहने छैन। समय गतिशील छ, जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ। थाहा संचार नेटवर्कमा यो हो नेपाल परिवेश, समयको आवाज। समय

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।